0: रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइक आवर रेडियो सेल्स ऑन 0116-471-0697 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk.
1: Soothing you through the night and early morning. This is Laika Radio Midlands.

0: This is Laika Radio. Bhojpuri Bawal.
1: Pawan ji, मैंने सुना है आप दोनों के relations अच्छे नहीं है.
2: आप सीधे सीधे आरोप लगा रही हो.
3: कहाँ सही झगड़ा चला था भाई.
0: The brand new reality TV show Bhojpuri Bawal, Monday to Sunday at 10 PM on Colors TV. Bring your vision to reality with ImagineX Global. Our team of Imagineers create immersive

0: your product advertised across the largest Asian radio network. We are Leica Radio. Email sales at leicamedia.co.uk.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410। दैट्स 85748410।
2: साउथ हॉल ट्रेवल at all protected.
3: 89% of UK customers check online before they spend. If they don't find you, they won't choose you. Go digital. Visit heartyhanks.com now. Hearty Hanks. Facts don't lie, results don't wait. Visit heartyhanks.com now.
0: This is Leica Radio, part of the Leica Radio Network, soothing you through the night and early morning. This is Leica Radio Midlands.

ओ मैं विसर ना जाए जे जु विचारे आर जा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जानी है नाल चले सब कोए चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जगले।

होए लख दरियाओ कुदरत कवन कहां विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पक्षार असंख मोन लिवलाय तार कुदरत कौन कहावी।

असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड़ हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच्छ मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भाव।

तेरे भगत रसाले। होर केते गावन से मैं चितनावन, नानक क्या विचारे, सोई सोई सदा सच साहिब, साचा साची नाई है भी हो।

कर कर वेखै सृजनहार, नानक सच्चे की साची कार, आदेश दिसे आदेश, आद अनिल अनाद अनात, जुग जुग एको वेश, एक दूजी बोला खोवें लख होवें लखवीस, लख लख

0: Book now, visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk. UK
2: Mega Blockbuster Dhurandhar. Mega Blockbuster Dhurandhar, 15th and 16th of August at 9 p.m. on Utsav Gold. Title sponsor Watchdog Security. Associate sponsor Lemfi.
3: Leica Radio Network, proud hospitality partner Ragasan. Your favorite show on Leica Radio Midlands. You can now listen back at leicaradio.com. It could be breakfast with Kajal, drive with Raj Vadon, the legendary presenters Ravi Sharma, Bali Brambat, or the energetic Radio Wally. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. Download the app for free and listen to Leica Radio Midlands when you want. Leica Radio Midlands is a part of the number one Asian commercial network, the Leica Group, home of Leica Radio and Leica Gold.
4: Leica Radio.
5: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर. ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी. सब कुछ फ्रेश और टेस्टी. लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए. तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS. कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं. क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड विमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर्स लेस्टर में.
6: Have you noticed the way fans shout at football matches?
7: Oh, wake up!
6: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
8: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइका रेडियो सेल्स ऑन 0116-471-0697 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk.
9: बातें चटपटी चाहिए और गीत चाहिए ओल्ड. मनोरंजन की दुनिया में 24 कैरेट गोल्ड. रवि शर्मा का मनोरंजन प्रोग्राम लाइका गोल्ड पर सुनिए मंडे टू फ्राइडे

बेटा ये सर्कस है, और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

राहुल, ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार? यू डू द पैकिंग, दे'ल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410। साफो ट्रेवल, ऑटो प्रोटेक्टेड।

0: Breaker Radio.
1: लेस्टर तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए. जेज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट बॉलीवुड लेजेंड लाइव इन कॉन्सर्ट फीचरिंग बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर, प्लेबैक सिंगर अमन त्रिका और फीमेल सिंगर मयूरी पटालिया. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare, demontforthall.co.uk
2: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 0780-280-655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
3: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक हैं? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं. एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है. शुरुआती सैलरी है £39,500, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स. दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स.

0: Good morning. आइए और जूतों समेत हमारी महफिल में शामिल हो जाइए। मेरा मतलब जूतों समेत हमारे दिल में उतर जाइए। बुधवार है आज। वर्ष 2026 के अगस्त महीने की 5 तारीख। दिन कितना तेजी से गुजर रहे हैं। अभी साल शुरू हुआ था और देखना अभी ये साल जाता हुआ नजर आएगा। अरे साहब, उम्र जा रही है, दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, पल पल छिन छिन या क्षण क्षण, भाई कैसे उम्र भाग रही है। आइए एक एक लम्हे का मजा लें। माय नेम इज रवि शर्मा, मनोरंजन लेकर मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। और बहन भाइयों, आप सब की ओर से पहले तो कहता हूं थैंक यू काजल, और अब स्वागत आपका एंटरटेनमेंट की दुनिया में। भाई आज बुधवार है और बुधवार का ये विचार है, ये लोगो है क्या?
1: ओम मंगल बुध वीर शुक्र शनि इतवार, 7 दिनों में हंसना चाहिए कम से कम 700 बार।
0: लेकिन साहब किसी दूसरे पर नहीं, अपने पर हंसिए, अपनी बीवी पर हंसिए, हिम्मत है तो। पत्नी ने आज घर से निकलते हुए वार्निंग दे दी थी, कह दिया था कि नित नई साड़ियों की मुझको कसम, तू मुझे लिपस्टिक से भी प्यारा है, मेरे फैशन की लाज है तुझसे, तेरी वेजेस का ही बस सहारा है, आ मेरी जान आके बर्तन धो ले, मैंने कितने प्यार से पुकारा है, थक गई लेट लेट कर सारा दिन, अब से पूरा किचन तुम्हारा है। कितनी अच्छी है।
2: Return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world. Are you listening? Leica Radio is now available across Birmingham on DAB.
3: ये क्या कह रहे हैं जी? लोग जोरू का गुलाम कहें तो कहें, अबा तुम जैसे भी हो, अब तू जैसा भी है, हमारा है, बिल्कुल हमारा है, थक गई लेट लेट के सारा दिन, अब ये पूरा किचन तुम्हारा है, आ आके बर्तन धोले, मैंने कितने प्यार से पुकारा है।
0: न तो क्या है, नहीं क्या है भाई, अपने घर में काम सभी करते हैं, आप कोई दिखा के नहीं करता है, भले ही पर्दा गिरा के करते हैं, लेकिन काम सब करते करना होता है। वैसे भाई बता दूं आपको कि पत्नी बड़ी क्या कहते हैं उसको, पतिव्रता है, और पतिव्रता का मतलब उन्होंने बताया है।
3: हाँ जी, पतिव्रता वो होती है, पतिव्रता का मतलब मुझे मेरी माँ ने समझाया था कि बेटी वहां जाकर के पतिव्रता बन के रहना, पतिव्रता वो होती है जो पति को बरते, जितना ज्यादा बरतोगी उतनी ही ज्यादा पतिव्रता होगी।
0: लाखों में एक है, करोड़ों में एक है, बस एक ही है तो फिर अरबों में एक है।

0: पति पत्नी में प्यार बहुत लगता है, हर दिन करवा चौथ लगता है। इतनी सेवा, इतना काम। देखिए, ये कपिल भाई ने भेजा है अपना अनुभव वाटफोर्ड से। लिखते हैं कि पति दारू पी के रात को देर से घर पहुंचा और जाके देखा तो भाई दरवाजे पे बीवी खड़ी थी झाड़ू लेके, और उसने जाते ही हाथ पकड़ के कहा, अरे ये इतनी देर तक काम करती रहती है झाड़ू लगा रही, तो ऐसा कर, कितना काम करेगी तू, ला ये झाड़ू मुझे दे, मैं लगाऊंगा सारे घर में झाड़ू, रात के 2 बज गए हैं, सोना नहीं है क्या, हे कुछ तो अपना ख्याल किया कर यार। बीवी के हाथ से झाड़ू लेकर के झाड़ू लगाने लगा, बीवी की आंखों में आंसू आ गए। रुलाएंगे क्या पगले। ख्याल रखना चाहिए भाई, खैर मैं तो रखता हूँ, अपनी बीवी का रखता हूँ, किसी और की का नहीं, अपनी बीवी का सबको रखना चाहिए। ये कपिल कह रहे हैं कि मैं तो रखता हूँ जी, अपनी बीवी का भी रखता हूँ, दोस्तों की और पड़ोसियों की सबकी बीवियों का ख्याल रखना चाहिए।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: लौट आइए हकीकत की दुनिया में, वही हंसना हंसाना तो चलता रहेगा, ये बातें बनाना चलता रहेगा, फिलहाल तो पैसे पहुंचाना ये काम जरूरी, जब रेट अच्छा चल रहा हो। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके याद दिला रहे हैं, रेट अच्छा है, अभी मौका है, पैसे भारत भिजवाना चाहें तो 1 पाउंड के बदले दे आर गिविंग 127.85 रुपीज। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI यूके मोबाइल ऐप। TNC अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. Leica Radio. This part of the show is brought to you by 108 Base Hospital Uri. Starts 15th of August every Saturday and Sunday at 7 PM on Colors TV.
2: I hope me and Nana hum log waqt par pahunche.
3: लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन। राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर। ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं। फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच। मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 LBS सिर्फ 13.49। सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99। टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ 29.96। एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 9 rupees से शुरू और हर्ज़मैन बटर घी 20 kg 10.99।
4: Falcon Cash and Carry 82A Size 10 Street West Leicester LE1 2JU and 2A Rollout Sale Leicester LE5 4UN.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
5: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danu. Prime location.
5: High appreciation.
6: In Dubai.
7: Are you a nurse, physiotherapist, occupational therapist or paramedic? Would you like to work office hours, enjoying every weekend off and no night shifts? At Capita, we are seeking hybrid clinical assessors based at various locations across the Midlands, with remote working possible for those who live outside the area. We offer a starting salary of £39,500, comprehensive training and ongoing CPD, plus a host of other benefits. Interested? Search Capita Health Assessment Jobs today.
8: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, लागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।

0: गए हैं अब खबरों के समय के नजदीक और यहाँ एक सवाल उठ रहा है कि ये सूखा कब तक चलेगा, क्योंकि बारिश न होने की वजह से कल थोड़ी सी हल्की सी बूंदा बांदी हुई थी, पर जैसे वो चिढ़ाने के लिए कुछ बूंदें गिराई हो भाई आसमान ने, और आज भी संभावना तो जताई जा रही है, लेकिन वो जो होज पाइप पर बैन है और वो जो घासों का रंग देखा आपने, घास गार्डन में जो हरे रंग की हुआ करती थी अब एकदम सफेद हो गई है, बिल्कुल डेड। पर इसके अलावा फसलों को जो नुकसान हो रहा है उस पर चिंता जाहिर की जा रही है। यहाँ पर ब्रूटल हार्वेस्ट कुड बी वर्स्ट ऑन रिकॉर्ड, हियर इज व्हाट इट मींस फॉर यूके फूड प्रोडक्शन। भाई इस पर लंबी रिपोर्ट जो है वो डिस्कशंस में है और चिंता का विषय तो है। और क्या क्या है आज के समाचारों में, लेट्स फाइंड आउट। लाइका रेडियो नेटवर्क, अब आप रवि शर्मा से आज के प्रमुख समाचार सुनिए। हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने को लेकर अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर से वार्निंग दी है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा हॉर्मुज स्ट्रेट बहुत जल्द खुल जाएगा वरना ईरान पर बहुत जोरदार हमला होगा। ये बात ऐसे वक्त में कही गई है जब किसी समझौते की उम्मीद के बीच तेल की प्राइसेस 3 हफ्ते के निचले स्तर पर आ गई हैं। ट्रंप ने ये बातें फॉक्स न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान कही हैं। वहीं अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर जाने वाला दक्षिणी रास्ता, साउथ का जो रास्ता है, इंटरनेशनल जल मार्ग से गुजरने वाले सभी कमर्शियल जहाजों के लिए खुला हुआ है। इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और फाइनेंस मिनिस्टर स्कॉट बेसेंट ने कहा था कि ईरान से बातचीत में तरक्की हुई है और उम्मीद है कि इस सप्ताह से ही तेल और दूसरे सामान की समुद्री ढुलाई, समुद्र के रास्ते ढोना फिर से शुरू हो जाएगा। भारत से आने वाली खबरों में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के 7 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आया है। उन्होंने कहा कि 7 साल पहले इसी दिन यानी 5 अगस्त को आर्टिकल 370 और 35A इतिहास बन गए, जिससे जम्मू कश्मीर और लद्दाख की यात्रा में एक निर्णायक अध्याय शुरू हुआ है, एक नया चैप्टर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में बड़े बदलाव आए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हुआ है, शिक्षा, हेल्थ सर्विसेज, खेल और कई क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं, इन्वेस्टमेंट। चाहे महिला हों या हाशिए पर रहने वाली कम्युनिटीज जिन्हें दशकों तक उनके बुनियादी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स से परे रखा गया था, वे अब भारत के संविधान के पूरी तरह से लागू होने की वजह से सशक्त हुए हैं। आर्टिकल 370 हटाए जाने के 7 साल पूरे होने पर उमर अब्दुल्ला का भी बयान आया है। उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि 7 साल बीत गए हैं लेकिन हम ना तो भूले हैं और ना ही हमने मौजूदा हालात से समझौता किया है, उन्हें स्वीकार करना दूर की बात है। उन्होंने कहा मैं और मेरी पार्टी जम्मू कश्मीर के साथ जो कुछ भी किया गया है, जिससे हमारे अधिकार छीन लिए गए हैं और हमारी पहचान पर खतरा पैदा हो गया है, उसे पलटने के लिए प्रतिबद्ध है। आपको याद दिला दें कि भारत की केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा खत्म करते हुए आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को हटा दिया था। चांद से टकरा सकता है स्पेस एक्स के रॉकेट का एक टुकड़ा। ये टुकड़ा लगभग 2.43 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ऑर्बिट में घूम रहा है। ये फाल्कन 9 स्पेसक्राफ्ट का ऊपरी हिस्सा है जो लगभग 5 मंजिला बिल्डिंग जितना बड़ा है और इसका वजन कम से कम 4000 किलोग्राम है। अब अमेरिकी जो स्पेस एजेंसी है नासा, उसके अनुसार ये टक्कर लगभग 7:35 ब्रिटिश समय के अनुसार और 12:35 पर भारतीय समय के अनुसार हो सकती है। जानकारों का कहना है कि इसे धरती से बिना किसी उपकरण के नहीं देखा जा सकेगा, लेकिन जिनके पास हाई क्वालिटी टेलीस्कोप है वे चांद की सतह से निकलती हुई चमक देख सकेंगे। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने मिसाइल से हमला किया है। इस हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है जबकि 22 लोग जख्मी हुए हैं, यूक्रेन के अधिकारियों ने जानकारी दी है। यूक्रेन के मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के प्रमुख तिमूर तकाचेंको ने कहा है कि दुश्मन एक बार फिर कीव पर जबरदस्त हमला कर रहा है। मंगलवार की देर रात हुए हमले के दौरान घंटों तक सायरन बजते रहे और शहर के भीतर और बाहरी इलाकों में कई मिसाइलें गिरने की खबर आ रही है। भारत में मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा बाई इलेक्शन में हार के बाद भारतीय जनता पार्टी ने दतिया जिले की पूरी ऑर्गेनाइजेशनल इकाई को तत्काल प्रभाव से फौरी तौर पर भंग कर दिया है। पार्टी ने कार्रवाई बाई इलेक्शन नतीजों की समीक्षा के लिए गठित की गई एक समिति की सिफारिश पर यह किया है। ईरान के साथ युद्ध के दौरान अमेरिका ने गाइडेड मिसाइल्स का अपना लगभग सारा ग्लोबल स्टॉक इस्तेमाल कर लिया है। ये जानकारी बीबीसी के मुताबिक जो है जारी की गई है। बताया गया है कि अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में खास तौर पर अपने लगभग सभी आर्मी टेक्निकल मिसाइल सिस्टम और प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइलों का इस्तेमाल कर लिया था। समाचार एजेंसी ने पहले रिपोर्ट दी थी कि अमेरिका ने इस ऑपरेशन में अपनी लगभग सभी लंबी दूरी की मिसाइल्स को इस्तेमाल में ले लिया है। और आखिर में यह खबर कि ट्रंप के दौरे से पहले उनके गोल्फ कोर्स के पास से एक हथियारबंद युवक को गिरफ्तार किया गया है। उनके अपने गोल्फ कोर्स के नजदीक एक जो है ये हथियारबंद युवक पकड़ा गया है। कैलिफोर्निया में अधिकारियों ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के प्राइवेट गोल्फ कोर्स के पास से इस शख्स को अरेस्ट किया। ट्रंप वहां पर फंड जुटाने के लिए आयोजित एक डिनर में शामिल होने वाले थे। जांचकर्ताओं का कहना है कि रेंचो पोलोस वर्डेस में ट्रंप के नेशनल गोल्फ कोर्स से 38 साल के जेनिन जॉन टेले को अरेस्ट किया गया है और उसके पास से एक पिस्तौल और गैर कानूनी गोला बारूद बरामद किया गया है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
1: ये है Like a Radio Tasty Track of the Hour brought to you by Coca Noodles।
0: जर्नलिज्म की दुनिया से निकलकर अब लौट आइए संगीत के संसार में, गीतों के विस्तार में। और आशा भोसले व किशोर कुमार में कितना टैलेंट भरा है, जरा मजा लीजिए। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, दिस इज लाइका रेडियो नेटवर्क, आई एम रवि शर्मा।

0: tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
1: This is Leica Radio. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
2: और भाई साउथ ऑल ट्रेवल का वो संदेश आप तक पहुंचा दें हम कि FCDO हैज लिफ्टेड इट्स एडवाइस अगेंस्ट ऑल बट एसेंशियल ट्रेवल टू दुबई. वो कहते हैं कि भाई जम के करो, खूब यात्रा करो दुबई की. कॉल साउथ ऑल ट्रेवल फॉर द मोस्ट कम्पिटेटिव दुबई डील्स ऑन 0208 574 8410. एट ऑल प्रोटेक्टेड.

0: स्वागत है आपका मनोरंजन कार्यक्रम के दूसरे दौर में। लाइका रेडियो नेटवर्क पर गोल्डन गीतों का खजाना लाइका गोल्ड रेडियो आपको स्वागतम कहता है। माय नेम इज रवि शर्मा और ये कार्यक्रम लेकर मैं दोपहर बाद 1 बजे तक आपकी सेवा में हाजिर हूँ। इस समय ब्रिटिश घड़ियों में 11:04 हुए हैं। आइए सुनते हैं थॉट फॉर द डे, आज का विचार, जिसके लिए आलेख हमें साउथ हॉल से प्रसाद वाले राजेश जी ने भिजवाया है और इसमें सहयोग भाई हमारे विपुल जी का भी, विपुल सिदानी, थैंक यू वेरी मच। क्रिस श्याम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो चिंतन में सहयोग देते हैं। आज का चिंतन एक गंभीर विचार है भाई। बातचीत में कभी कभी हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर जाते हैं कि फला चीज बिल्कुल मिट्टी के भाव मिल रही है, यानी बहुत सस्ती मिल रही है, पर मिट्टी को इतना सस्ता कैसे मान लेते हैं हम? मिट्टी इतनी वैल्यूएबल है ये आज का चिंतन साबित कर रहा है। थैंक यू राजेश जी, थैंक यू विपुल भाई। एक बूढ़ा किसान रोज अपने खेत में जाता था, मेहनत करता और कभी कभी अपने खेत की मिट्टी को उठाकर माथे से लगाता, सम्मान प्रकट करता। हमने देखा कई लोग जब अपने वतन लौटते हैं तो हवाई जहाज से उतरते ही जमीन पर पांव रखते हुए पहले धरती को चूमते हैं। राजेश जी, हमें भी हमारी माँ ने सिखाया था कि जब हम सुबह उठे ना तो चारपाई से जमीन पर पांव रखने से पहले धरती को नमस्कार करें कि पूरा दिन उस पर चलना है, हमने हमारा बोझ उठाती है, हमारे पांव पड़ते हैं उस पर, उससे पहले हम उसे माथा झुकाते हैं। अब उस किसान को मिट्टी माथे से लगाते हुए देख करके उसके बेटे ने आखिर पूछ लिया, पिताजी आप इतनी मेहनत करते हैं, ये मिट्टी की खुदाई करते हैं, बीज बोते हैं, लेकिन ये मिट्टी आखिर आपको देती ही क्या है? इतने पसीना बहाने के बाद उतना फल तो नहीं मिलता। पढ़े लिखे लोग, मॉडर्न लोग मशीनों से, अपने दिमाग से कितना धन कमाते हैं। किसान मुस्कुराया, मिट्टी की कीमत जानना चाहते हो? उस किसान ने जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और अपने बेटे की हथेली पर रख दी। देखो बेटा, यही मिट्टी है जो बीज को पेड़ बना देती है, पेड़ को फल देती है और फल से किसी और का जीवन चलता है, मतलब और बहुत सारे पेड़ बना देती है। मिट्टी खुद कुछ नहीं मांगती, बस देती ही रहती है। बेटे ने पूछा, तो क्या हमें भी मिट्टी जैसा बनना चाहिए? किसान बोला, हाँ, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी कामयाबी यह नहीं कि हमने कितना पाया, बल्कि यह है कि हमारे कारण किसी और की जिंदगी में कितना कुछ खिला, किसी और को कितना मिला। यह मिट्टी का संदेश है। हम मिट्टी से बने हुए हैं, हम मिट्टी को तुच्छ नजरों से ना देखें, मिट्टी बहुत वैल्यूएबल है, हमें एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है, मिट्टी से ही आना है, मिट्टी में जाना है।
1: चिंतन, चिंतन।
0: तो बहनों भाइयों, ये माटी ही हमारी कहानी है, हमारी जिंदगी।

0: माटी बोलती है, इतिहास के पन्ने खोलती है, उन घटनाओं को तोलती है। भाई ये गीत तो पूरा का पूरा स्वतंत्रता संग्राम को समर्पित हो गया, और भारत का स्वतंत्रता दिवस आ रहा है 15 अगस्त को। रवि शर्मा फिर आपको याद दिला रहा है कि 22 अगस्त को मनाया जा रहा है नवनाइट सेंटर में, हेज में है ये, प्रिंटिंग हाउस लेन में। बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, बड़ी व्यवस्था, सारे इंतजाम, फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग, फ्री फूड, फ्री एंटरटेनमेंट, ऑल फ्री बिकॉज इट इज योर इवेंट। तो पहुंचिएगा उत्साह के साथ, आप आइए, सबको लाइए। ये कहना है इंडियन हाई कमीशन का और इंडियन डायस्पोरा का, कम्युनिटी इवेंट है, सब मिलकर के मना रहे हैं 22 अगस्त को नवनेट सेंटर में, जो हेज में है, प्रिंटिंग हाउस लेन में, भारतीय स्वतंत्रता दिवस की 79वीं वर्षगांठ कहिए या 80वां स्वतंत्रता दिवस, क्योंकि वर्षगांठ तो एक साल बाद आती है ना। तो भाई 22 अगस्त को मनाएंगे, और आज के इस गीत के लिए और चिंतन के लिए धन्यवाद पहुंचाएंगे राजेश प्रसाद जी को, साउथ हॉल में प्रसाद वाले, और हमारे मित्र विपुल सिडानी जी को, क्वालिटी वाले। और बहनों भाइयों, जो गीत आपने सुना कैसा लगा? बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया आई है, बहुत अच्छा लगा। नवरंग फिल्म का था, 1959 में आई थी ये फिल्म, और महेंद्र कपूर व साथियों की आवाजें थी। ऐसे ही चिंतन भाई हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद आप सुन पाते हैं। आज का चिंतन, आज का विचार अब समाप्त होता है।
1: चिंतन चिंतन
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: SBI UK यानी State Bank of India UK, फिर याद दिला रहे हैं आपको, अच्छा रेट चल रहा है। पैसे भारत भिजवाना चाहे तो मौके का फायदा उठाइए। For £1 SBI is giving 127.85 Indian rupees. You can transfer via branch, online, or by using the Yono SBI UK mobile app. Terms and conditions apply.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Leica Radio.
3: This part of the show is brought to you by 108 Base Hospital Uri. Starts 50th of August every Saturday and Sunday at 7 PM on Colors TV.
4: I hope Major Naina, hum log waqt par pahunche.
3: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
5: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy.
3: Live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
5: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
3: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
5: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
6: Southall Travel, 7 days a week. Southall Travel, 24 hours a day.
7: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
8: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
9: Southall Travel can take you there.
10: Southall Travel, at all protected.
11: Leicester Miller is back.
12: And the stage is about to

0: फीडबैक सुनवाए हमने आपको भाई। ये लाइका रेडियो नेटवर्क पर लाइका गोल्ड गीतों का खजाना है, गोल्डन गीतों का खजाना। राइट, बैक टू बैक संगीत हर घंटे में दो गीत प्रस्तुत करवाता है भाई, आपके नाम लगाता है। और फिर
1: लिसन व्हेयरएवर यू आर बाय डाउनलोडिंग द लाइका रेडियो मोबाइल ऐप नाउ।
0: भूलिएगा नहीं, मोबाइल ऐप डाउनलोड करके भाई लाइका गोल्ड खजाना जो है आप अपनी पॉकेट में रख सकते हैं।
1: लाइका रेडियो Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: और इस गीत को सुनकर आपको मिसिस देवगन याद आ रही होंगी। जानते हैं ना, भूले तो नहीं आप मिसिस देवगन को। अरे भाई अपनी काजोल, आज काजोल अपना जन्मदिन मना रही है। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू हर। भाई काजोल से मेरी मुलाकात उस वक्त हुई थी जब काजोल काजोल नहीं लगती थी, एक स्कूल की बच्ची लगती थी वो, और उनकी माता श्री वो भी साथ आई थी, तनुजा जी।
1: मैं एक जवान लड़का, तू एक हसीन लड़की।
0: ये हसीन लड़की भाई उस वक्त सचमुच स्कूल की कोई लड़की लगती थी। मैंने सोचा कि शाहरुख खान के साथ हीरोइन कैसे जमेगी ये। हालांकि भाई वो शिल्पा शेट्टी भी थी, फिल्म थी बाजीगर जिसका प्रीमियर हो रहा था, एक सिनेमा होता था अजमेर में बेलीव्यू, और भाई उसकी स्टेज पर मैंने प्रेजेंट किया था शाहरुख खान काजोल और शिल्पा शेट्टी को। संगीतकार अनु मलिक भी आए थे, उन्होंने कुछ गीत गाए थे। भाई वो माहौल और वो जमाना, वो दौर कुछ और था, पर मैं सोचता था कि ये हीरोइन लगेगी कैसे इतनी छोटी बच्ची, और साहब सुपरहिट साबित हुई। और शिल्पा शेट्टी और काजोल के साथ मेरी फोटो भी अखबारों में छपी थी उस समय। फिल्म कौन सी थी याद है ना, बाजीगर, हिट साबित हुई थी फिल्म बाजीगर।

0: बेलव्यू सिनेमा भी भाई अब यादें बनकर रह गया है। अनु मलिक ने गीत गाया था, शाहरुख ने केक काटा था, वो पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं जब कभी ऐसा कोई प्रसंग आता। अजय देवगन से तो कई बार मुलाकात हुई, लेकिन उनकी धर्मपत्नी काजोल तो उसी समय मिली थी जब ये फिल्म रिलीज हुई थी। काजोल, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ फील गुड ट्रैक
1: brought to you by Dairy Valley. Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma. Like a radio.
0: Like a extra podcast update. Like a extra par bhai hamara naya एपिसोड जो है वो आ चुका है, ऑनर बेस्ड अब्यूज, एक ऐसी बर्निंग भाई कहानी या ज्वलंत टॉपिक है, ये विषय ऐसा है जिसे डिस्कस किया है दीप राजा और खुश ने। और भाई ये दोनों ही इस काम में बड़े माहिर हैं और बड़े अच्छे सवाल उठे हैं, अच्छी डिस्कशंस हुई है। तो ये जो ऑनर बेस्ड अब्यूज हमारी कम्युनिटीज में कहीं कहीं सुनाई पड़ती हैं, दिखाई पड़ती हैं, उन पर विस्तार से परिचर्चा हुई है, जरूर देखिएगा ऑनर बेस्ड अब्यूज होस्टेड बाय दीप राजा एंड खुश। ये नया एपिसोड हमारी पॉडकास्ट का नंबर 27 उपलब्ध है। लाइक एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेज़न, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स।
3: लाइक एक्स्ट्रा इज हियर। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर द मिडलैंड्स एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव। Leica Radio.
1: Leicester Falcon Cash and Carry, festive shopping ka perfect destination. Rakhi aur Ganesh Idols ab available hain sabhi Falcon stores par. Onam Sandhya ke liye pre-bookings bhi shuru ho chuki hain. Falcon snacks 300 grams ki full range sirf £1.99 each. Mustafa Dehraduni rice 20 lbs sirf £13.49. Suhana Khaman Thokla 500 grams sirf £1.99 each ya 2 for £2.99. Tilda Grand Basmati 20 kg sirf £29.96. S Motiram Namkeen ab sirf 99p se shuru aur Herdsman Butter Ghee 20 kg sirf 10.99.
4: Falcon Cash and Carry 82A Syston Street West Leicester LE12JU and 2A Rollout Sale Leicester LE54UN.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
5: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
5: High appreciation.
6: In Dubai.
7: Citybound Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
8: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
7: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
8: Also explore 2026 cruises.
7: From Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester, or call Citybond Travel on 01162 167 225. We're at all protected.
9: After the smash hit run in 2025, Surinderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bungalow and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turned this classic Pando tale on its head and give it an exciting dizzy twist.
10: Be sure to catch the show across the Midlands, the Belgrade Theatre Coventry, Thursday the 16th to Sunday the 19th of July, and at the Crescent Theatre Birmingham, Wednesday the 9th to Saturday the 12th of September, and Wednesday the 30th of September to Saturday the 3rd of October.
9: Click rifkotheatre.com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight.

0: प्यारी, जिंदगी से भी प्यारी। तू झूठ बोलता है।
1: Ravi Sharma on Leica Radio. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: And let me tell you the rates for £1 they are giving in Indian currency 128.12 rupees. 128 rupees 12 paise. Bharatiya mudra mein. Pakistani currency mein 374.11 rupees. Sri Lankan rupee 451.58. Bangladeshi take 1 pound ke badle 166.49. Aur Afghani 88.22.
1: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
3: Leica Radio.
1: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: सोने की कीमतों में उछाल आया है। The gold is trading at the rate of 99.34 pounds per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
4: This part of the show is brought to you by 108 Base Hospital Uri. Starts 15th of August every Saturday and Sunday at 7 PM on Colors TV.
5: I hope Major Naina, hum log waqt par pahunche.
6: Leicester, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए. Jay's Entertainment presents Bollywood Legend live in concert featuring Bollywood actor Sanjay Kapoor, playback singer Aman Trika, और female singer Mayuri Patalia. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare demontforthall.co.uk
7: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
8: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक है? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं. एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है. शुरुआती सैलरी है 39,500 पाउंड, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार सीपीडी सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स. दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स.
9: Leicester's iconic hot potato shop is now serving up fresh flavor at Foss Park. After 45 years on Belgrave Road, we've rolled in with another brand new Airstream trailer, serving piping hot loaded jacket potatoes and fresh cut chips made to order. Open 7 days a week with generous portions and unbeatable taste. Find us outside M&S next to the Barclays Hub. Look for the shiny Airstream and grab your favorite today. Hot potato shop now at Foss Park.
10: Location, location, location.
11: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
10: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
11: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
10: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
11: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
10: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
11: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location,
10: high appreciation
11: in Dubai.
12: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Burfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same burfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
13: Mum always said, beta, clove and neem keep the mouth healthy. Now that same trusted wisdom comes from Baidyanath, over 100 years of Ayurvedic legacy in Siddhayu toothpaste. Fresh breath, strong gums, pure herbal care. Siddhayu, now available in Falcon Cash and Carry, Leicester and Nottingham. Siddhayu, Ayurveda that fits your life.
14: खाकरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
15: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाकरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
14: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
16: When you notice something wrong, it tends to grow and eventually take over to the point you can't really think of anything else. If something in your body doesn't feel right, the thought it could be cancer can play on your mind. Tests could put your mind at rest. Finding out sooner is always better. Your NHS wants to see you. Contact your GP practice.
17: It was just another day, a familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend, and he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
1: From West Midlands to East Midlands, this is Leica Radio Midlands.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
0: और बहनों भाइयों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले, गीत सुनवाने से पहले सोचता हूँ ये गीत किसके नाम करें। भाई ये गीत जा सकता है वेंकटेश प्रसाद के नाम। कौन वेंकटेश प्रसाद? पूरा नाम बताएं क्या? अरे भाई जयंती प्रसाद, जयंती प्रसाद यानी वेंकटेश प्रसाद जो है, जयंती तो उनकी पत्नी का नाम है, पिता का नाम क्या है वो जो उनके नाम के साथ जुड़ता है वही। भाई वेंकटेश प्रसाद जो है वो बॉलर हैं भारतीय क्रिकेट टीम के, पुराने बॉलर, और फिर बाद में वो गेंदबाजी के कोच भी रहे हैं। आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। जावागढ़ श्रीनाथ का तो नाम आपने सुना होगा, उनकी समकक्ष भाई, उनके बराबर ये तेज गेंदबाजी के लिए जाने जाते थे। और ख़ास बात ये थी कि दोनों तरफ गेंद को स्विंग कर सकते थे, और बेस्ट इनका जो बॉलिंग एनालाइज जो उनका सर्वेक्षण था वो था 33 रन देकर 6 विकेट एक इनिंग में इन्होंने पाकिस्तान की टीम के खिलाफ झटके थे। तो जन्मदिन की बधाई भाई, 57 बरस के हो गए हैं आज वेंकटेश प्रसाद। लेकिन आपके घर परिवार में अगर किसी का जन्मदिन है तो भाई मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। रवि शर्मा की ओर से ये तोहफा, ये नजराना, रफी साहब की आवाज में ये मीठा सा गाना स्वीकार कीजिए।

आर मिलो सजना फिल्म का गीत रफी साहब की आवाज में। भाई हमें ले आया है खबरों के नजदीक, और खबरों में जैसा कि आप सुन रहे हैं कि इस मौसम में सूखेपन के कारण फसलों को जो नुकसान हुआ है, और जिसके कारण कहते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऐसा खाद्य संकट इस देश के सामने आ रहा है, जिसके बारे में सुनकर के आप जरूर चिंतित होंगे। इसके अलावा और क्या क्या है खबरों में, आइए खबरों की ओर बढ़ते हैं। अब से कुछ पल बाद आप समाचार सुनेंगे, पर उससे पहले सुनेंगे वेरी गुड मॉर्निंग।

0: जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजों में भाई ये गीत आप सुन रहे थे। ऐसा लगता है जैसे बंटवारा कर रहे हो, ये तेरा घर ये मेरा घर, तू इधर तू उधर, मैं इधर तू उधर। लेकिन साहब गीत बहुत मिठास लिए हुए जगजीत सिंह एंड चित्रा सिंह। इससे पहले जो गीत सुनाया था तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, जबरदस्ती है बिना भाई वो क्या कहते हैं बिल्डिंग परमिशन के, बिना किसी लाइसेंस के तेरे घर के सामने घर बनाऊंगा, चाहे जगह हो चाहे ना हो, घर तो नहीं बना सकते भाई, पता है ना यहाँ योगी का बुलडोजर तो नहीं आएगा लेकिन आपको बनाने ही नहीं दिया जाएगा। यहाँ वहां दूसरी धमकी दे सकते थे, जैसे मैं एक घर खरीदना चाहता था बहुत सालों पहले की बात है, तो भाई बहुत अच्छा लगा, पसंद आ गया, सारी डील होने लगी तो जो मकान मालिक है वो मुकर गया। अब मेरा एक दोस्त था, उसे मुझसे भी ज्यादा दुख हुआ, तो पता है उसने क्या कहा, रवि परेशान मत हो, कल मैं इसके घर के सामने ऐसा कुछ करके आऊंगा कि सारे घर वाले बच बच के चलेंगे। क्या करेगा, बस ये नहीं बताऊंगा, लेकिन सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जाके कुछ ऐसा करके आऊंगा कि छोड़ो क्या रखा सच्ची बात है। इस देश में भाई सबसे मुश्किल काम है घर लेना, और गाड़ी तो ले लेते हैं लोग, मेंटेन भी कर लेते हैं, इंश्योरेंस भी भर लेते हैं, घर तक पहुंचते पहुंचते उम्र निकल जाती है, और कई लोग उम्र भर किराया ही भरते रहते हैं भाई। ये रहने की जगह तेरे घर के सामने घर बनाऊंगा, काश ऐसी इजाजत होती, लेकिन कहाँ है, अब तो हिंदुस्तान में भी योगी का बुलडोजर चल जाता है। प्रोग्राम का तीसरा और अंतिम दौर, स्वागत है आपका। अगर आपने रेडियो भी सुनना शुरू किया है तो माय नेम इज रवि शर्मा, दोपहर बाद एक बजे तक मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। कुछ संदेश आए हैं भाई, इनमें ये क्या है, बेसन साहब ने भेजा लतीफा, क्या लतीफा है, कह रहा है कि एक महिला ने फोन करके कहा डॉक्टर साहब जल्दी आइए, मेरे बेटे ने ब्रेड खा लिया। अरे डॉक्टर कहता अभी आ रहा हूं, घबराना नहीं, मैं अभी आता हूं। दो मिनट बाद फिर उस औरत का फोन आ गया, रहने दीजिए मत आइए, क्यों तुम्हारे बेटे ने ब्रेड खा लिया था, हाँ कोई बात नहीं मत आइएगा क्योंकि मेरे हस्बैंड को शेव बनाने के लिए दूसरा ब्रेड मिल गया है। कमाल है, पति ने कहा पत्नी से, जानती हो तुम्हारे साथ शादी करके मुझे एक बहुत बड़ा फायदा हुआ है।
1: है कौन सा फायदा मुझे बताइए ना।
0: मुझे मेरे सारे गुनाहों की सजा इसी जन्म में मिल गई है, ये फायदा हुआ। और ऐसी बात कह के क्या लगता है आपको कि आपकी सजा खत्म हो गई, ये तो एक और सजा शुरू हो गई है आपने जो ये बोला। साहब आज है बुधवार और शर्मा जी आपको इजाजत है, बोले जाओ, कोई कुछ नहीं कहेगा घर पे जाने के बाद।
2: मंगल बुध वीर शुक्र शनि इतवार, सात दिनों में हंसना चाहिए कम से कम 700 बार।
3: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके याद दिला रहे हैं, अगर आप पैसे भिजवाना चाहते हैं भारत तो भाई ये मौका है क्योंकि रेट अच्छा चल रहा है। क्या रेट है आज, वेल फॉर वन पाउंड दे आर गिविंग 127.85 रुपीस मैक्सिमम। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाई यूजिंग द योनो SBI यूके मोबाइल ऐप। Terms and conditions apply.
3: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Leica Radio.
4: This part of the show is brought to you by 108 Base Hospital Uri. Starts 50th of August every Saturday and Sunday at 7 p.m. on Colors TV.
5: I hope we reach Rajanera. लेस्टर फैल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन। राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फैल्कन स्टोर्स पर। ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं। फैल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच। मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 LBS सिर्फ 13.49। सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99। टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ 29.96। एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 9 rupees से शुरू। और हर्ज़मैन बटर घी 20 kg सिर्फ 10.99।
6: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइस्टन स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE1 2JU एंड 2A रोलॉट सेल लिस्टर LE5 4UN।

0: चला
1: चेशम वाले अजाज भाई ये गीत आपके नाम कर देते हैं, आप भी रफी साहब के बहुत बड़े फैन हैं हमारी तरह। बैसन साहब अपने नाम भी कर लीजिए थोड़ा सा गीत आप। प्रकाश नॉर्थ होल्ट में, निर्मला जी विजय मॉरिशस में, जय श्री महेंद्र बजारिया और ये कौन है बिग स्टार रिकिन, थैंक यू आपको।
2: Brought to you by Dairy Valley.
3: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
1: और वियना में अनिल सोनी जी, अगला गीत भाई दुनिया भर के शरीफ लोगों के नाम। किसी को किसी की मोहब्बत ने मारा, किसी को किसी की गुरबत ने मारा, पर शराफत अली को उसकी औरत ने मारा।

0: उनके बड़े अच्छे नंबर आते थे भाई। हाँ मैं पढ़ाई लिखाई में हमेशा 10 नंबर ही। स्वर्गीय मुकेश के स्वर में आप सुन रहे थे ये गीत।
1: Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: भाई वो माटी वाला चिंतराज बहुत लोगों को भा गया, सबको पसंद आ गया। इमरान भाई थैंक यू वेरी मच, आपका संदेश मिल गया है। सुनते रहिएगा हरविंदर जी और स्लो में पमी भाई, भरत गंगाराम जी, रंजन, हिना, मीनाक्षी। ये मीनाक्षी कौन सी वाली है, मीनाक्षी पाटिल या मीनाक्षी डागर? भाई जितनी भी मीनाक्षी है सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और फरीदा गुलाम अली जी थैंक यू। नैना शाह इतने बढ़िया बढ़िया गीत आप सुझाती हैं, लेकिन भाई हमारी ये मशीन और हमारा ये कंप्यूटर जो है ऐसे गीतों को ढूंढ नहीं पाता है, क्या करें। आई विश कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी होती, मैं जो गीत मांगता लेकर के आप सामने खड़ी होती। तो विमल रायन जी थैंक यू वेरी मच, सुनीता जी बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई ये कौन है, हाँ हमारी नीलम जी, सो नाइस ऑफ यू। मीना शर्मा जी थैंक यू वेरी मच। राजीव पटेल साहब थैंक यू भाई, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक सूचना है हमारे पास, क्या है वो आपको बता दूं कि लाइका रेडियो नेटवर्क इज प्राउड टू टीम अप विद भारतीय विद्या भवन। क्या कर रहे हैं हम उनके साथ मिलकर भाई, द समर शो केस 2026 at Harrow School. They are organizing experience the richness of Indian classical arts and culture in an unforgettable celebration of music, dance and artistic excellence on Saturday the 8th of August from 3 p.m. onwards. Tickets available from ticketsource.com/bhavan or call 07421 497541.
1: ये है लाइका रेडियो।
3: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

0: तोड़फोड़ की बात नहीं करना आज के प्रोग्राम में। हाँ कोई तकलीफ है तो बताओ।
1: दिल में दर्द रहता है।
0: अच्छा।
1: मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती।
0: बहुत गंभीर बीमारी है कन्या। डॉक्टर ने पूछा दर्द कहाँ रहता है बताओ। कहता डॉक्टर साहब पहले फीस बताओ। उसने कहा भाई फीस तो मेरी इतनी लगेगी। देखिए डॉक्टर साहब फीस कुछ कम कीजिए। मैडम कहती है कि फीस तो कम नहीं होगी। कहता फिर नहीं बताऊंगा कहाँ दर्द रहता है, ढूंढते रहो। बिल्कुल नहीं बताऊंगा। या मैडम कहती है
2: नहीं बताऊंगी दर्द कहाँ है, दर्द है अब डॉक्टर तुम हो ढूंढते रहो, या तो फीस कम करो तो बता दूंगी।

बता, मुझे घर वाले डॉक्टर बनाना चाहते थे, डॉक्टरी पढ़वाना चाहते थे, लेकिन भाई ऐसे ऐसे पेशेंट मेरे सामने मेरे दोस्तों के पास आते थे कि उनको देख करके मैंने डॉक्टर बनने का विचार छोड़ दिया। नंबर एक तो ये है कि भाई मैं जो बनना चाहता था वो वाला डॉक्टर मुझे बनाने को तैयार नहीं थे। मेडिकल कॉलेज वाले कहते हैं तुम नहीं बन सकते। मैंने कहा क्यों नहीं? कहते नहीं बन सकते क्योंकि मैं ना लेडी डॉक्टर बनना चाहता था। कहते तुम लेडी डॉक्टर नहीं बन सकते तो जाओ बाहर में, नहीं बने। और फिर पेशेंट कैसे कैसे आते थे। एक पेशेंट बहस कर रहा मेरे दोस्त डॉक्टर के साथ, तो वो कहता डॉक्टर साहब मुझे ना जैसे सुबह को बुखार चढ़ता है शाम को उतर जाता है, फिर अगले दिन सुबह बुखार नहीं चढ़ता है तो शाम को उतरता भी नहीं है। ये क्या मतलब? अरे जब चढ़ेगा नहीं तो उतरेगा क्यों डॉक्टर साहब, आप समझ जाइए ना। तीसरे दिन फिर सुबह बुखार चढ़ता है शाम को उतर जाता है। डॉक्टर ने कहा भाई इतना लंबा क्यों कर रहे हो, सीधे सीधे कह दो कि बारी का बुखार है। वो जो बारी का बुखार था ना मलेरिया, उसको बारी का बुखार कहते हैं। बारी का बुखार बारी बारी से चढ़ता है। तो पेशेंट अकड़ गया, वाह डॉक्टर साहब बारी का बुखार कैसे कह दूं? अरे बारी का बुखार तो तब होगा जब एक दिन मुझे चढ़े, उससे अगले दिन आपको चढ़े, उससे अगले दिन फिर मुझे चढ़े, और उसके बाद अगले दिन आपको चढ़े, तो बनता है बारी का बुखार।

0: लाइका रेडियो पंजाबी लाइका रेडियो मोबाइल ऐप ते लाइका रेडियो .com ते एलेक्सा प्ले लाइका रेडियो पंजाबी
1: पंजाबी
2: नेक्स्ट गोल्ड आफ्टरनून्स विद वाली ब्रांबट ऑन लाइका रेडियो मिडलैंड्स मनोरंजन विद रवि शर्मा.
3: वो पूछ रहे हैं कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस कुंवारे क्यों रह जाते हैं, बेचारे समय नहीं निकाल पाते हैं शादी शादी करने के लिए. नहीं, वो वोट मांगने जाती हैं, फेवर मांगने जाती हैं, तो भाई उनको हर किसी को ना वो आदत पड़ जाती है बहन कहने की, बहन जी वोट मुझे ही देना, बहन जी भाई का ख्याल रखना. मैंने तो एक नेता से पूछ लिया, क्या बात है भाई आपने शादी नहीं की, आप 50 से ऊपर हो गए हैं, क्या रिश्ते नहीं आते क्या? तो कहने लगे, नहीं ऐसी बात नहीं है, रिश्ते तो बहुत सारी बहनों के आ चुके हैं, लेकिन कोई लड़की पसंद नहीं आती क्योंकि सब में कोई ना कोई कमी नजर आ जाती है. आगरे वाली आग लगाए, झांसी वाली झांसा दे जाए,

पहना मान ले गंगाराम। इससे पहले कि काले बालों में तार चांदी के झिल मिलाने लगे, इससे पहले कि पास की चीजें दूर की चीजें नजर आने लगे, लड़कियों के बजाय जब तुझको बूढ़ियां देख करके मुस्कुराने लगे, बच्चे माशूक की गली के सब तुझे मामा जी कह के बुलाने लगे, बेटा शादी कर ले। अबे शादी कर रहे किससे कर लूं? गंगाराम कुआरा ही रहेगा, प्यार का मारा ही रहेगा। चलिए साहब, जब तक गंगाराम की सगाई होती है, इजाजत दीजिए, अगली मुलाकात में ढूंढेंगे लड़की इसके लिए। हैव अ सुपर्ब डे, बाय बाय।

सुंदर जी ने लीडर बनकर झाड़ी एक तकरीर, अखबारों में छप गई तोता मैना की तस्वीर। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ? अरे फिर वही हुआ जो हमें

0: Woohoo! I love it. I love it. My brother taught me how to yodel. You know that, my brother Bob. And he's landing into London today from Mumbai. So we're going to do a little jugalbandi. Aamne samne baithke wo yodeling karega, main bhi yodeling karunga. Yes, hum dono Kishore da ke bade chust fans hai. And I have... उसमें और मेरे में यही फर्क है कि ही डज इट फॉर प्लेजर एंड आई डू इट फॉर मनी. सो आई सिंग फॉर मनी एंड ही सेज आई विल नेवर सिंग फॉर मनी, आई डू इट फॉर प्लेजर. सो ये दोनों भाइयों में एक डिफरेंस है हमारे में, लेकिन ही इज द वन हु टॉट मी, मेरा गुरु, मेरा भाई. सो ही विल बी लैंडिंग टुनाइट एंड आई विल बी हैविंग लॉट ऑफ फन. मैं हूं बाली ब्रह्मभट ऑन लाइका गोल्ड विद गोल्ड आफ्टरनून्स, अवेलेबल ऑन 1035 मीडियम वेव, DAB, एलेक्सा, गूगल होम एंड laikagold.com, ऑल्सो अवेलेबल ऑन रेडियो प्लेयर ऐप. एंड it is in the Laika Radio Midlands. A big, big namaskar to everybody in the Midlands. Hamara station jata hai har kone pe. That's right. Aur mere dost Leicester mein ho ya Birmingham mein ho, they all listen to this show, Gold Afternoons. It is the 392nd day of Laika Radio Midlands, jis pe aayenge Raj Batan from 4 to 7. And on this place here, Laika Gold, we will have Sandy Shah. Yes. So, aage badhte hain. Maine kal sunaye the 3 hours, maine aapko gaane sunaye the, sober songs of Kishore Da. And by 22 music directors in alphabetical order. Agar kisi ne nahi suna to listen back and you'll enjoy that show like anything. And aaj I'm showing you the versatility of Kishore Da. The versatility matlab the most versatile singer one could ever see. Jaise ke aaj inka yodeling wala roop. Ji haan, the way he yodeled, nobody else in the industry did that. And he cashed in on that one. Kishore Da... एक्चुअली मैं बोलने जा रहा था कि उनके जो योडलिंग वाले गाने हैं वो इस आवर में मैं पेश करूंगा. एंड इन द नेक्स्ट आवर हम पेश करेंगे उनके राग आधारित गाने. जी हाँ, इन्होंने कितने रागों में गाया है मैं आपको एक सिर्फ एग्जांपल दे देता हूँ. जैसे कि अपना कौन सा राग है, शिवरंजनी. शिवरंजनी राग में उन्होंने सबसे मशहूर गीत गाया था, मेरे नैना सावन भादों. ऐसे तो इन्होंने मिश्र दरबारी, भैरवी, तोड़ी भैरवी, फिर खमाज राग. मैं आपको सुनाऊंगा खमाज राग में कौन सा गीत उन्होंने गाया था, भैरवी में कौन सा गाया था, मालगुंज, किरवानी, यमन, ये सब रागों में इन्होंने गीत गाए थे. एंड एक्चुअली अ कॉमन परसेप्शन दैट किशोर कुमार वॉज नॉट एडेप्ट इन सिंगिंग राग बेस्ड सॉन्ग्स. You know, he was known to incorporate nuanced classical elements and flair in several melodies, showcasing his range as a singer. Kyunki unko ye prove to nahi karna tha, ek demand thi. जो भी म्यूजिक डायरेक्टर आता था या प्रोड्यूसर डायरेक्टर दे गाने लेकर आते थे, उनको लगता था कि ये मूड का गाना है, ये सीरियस मूड का गाना है, ये सैड मूड का गाना है, ये योडलिंग वाला गाना है, तो वो अपनी योडलिंग करके गाने को हिट कर देते थे. जैसे कि जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, पूरी अंदाज फिल्म को उन्होंने उठा दिया विद जस्ट अ गेस्ट रोल एंड पूरी फिल्म बिक गई, सारी टेरिटोरीज बिक गई, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन सॉन्ग ऑन द मोटर बाइक विद हिज डिजाइनर ग्लासेस एंड ऑल दैट, यू नो. सो Shades, I would say, rather than glasses. And he showcased, you know, Lata Mangeshkar sang 348 songs with Kishore Kumar, compared with 450 songs with Muhammad Rafi Saab and 161 songs with Mukesh. Lekin those 348 songs with Kishore Kumar were all super duper hits. Par aaj hum concentrate karne wale hain yodeling songs this hour and... Oh yeah, राग आधारित गाने in the next hour. दूसरा और तीसरा रूप किशोर कुमार का, the two extremes. Enjoy yourselves and message me when you listen to all these songs and let me know what you think of them.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 in British sterling can get you up to 127.85 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gold Afternoons. Proudly sponsored by Jaimin Foods. The authentic taste of India. Dal bhat, pav bhaji, biryani. Bas pet sambhar jo, kyunki cravings badhne wali hai.
1: This part of the show is brought to you by 108 Base Hospital Uri. Starts 15th of August every Saturday and Sunday at 7 PM on Colors TV.
3: I hope Major Naina, hum log waqt par pahunche.
4: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक हैं? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है £39,500, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स।
5: Location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
6: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas, Greens, start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
5: High appreciation.
6: In Dubai.

ये वक्त ये जमाना जब ना लगे सुहाना फिर मेरे पास आना, खादिम हूँ मैं पुराना, रखता जो कुछ नजर है।

0: किशोर दा ने यूडलिंग कैसे सीखा? ही यूज्ड टू बी अ ग्रेट फैन ऑफ सर्टन वेस्टर्न यूडलर्स, आई वुड से, एंड दे वर लाइक फ्रैंक आई फील्ड जो थे, जिसको मैं भी सुनता था, एंड आई यूज्ड टू रिमेम्बर द टाइप ऑफ स्विस टाइप ऑफ यूडलिंग दे यूज्ड टू डू. जिमी रॉजर्स, टेक्स मॉर्टन, ये सब थे. एंड कुछ रिकॉर्ड्स अनूप कुमार उनके भाई के पास थी, वो सुन सुन के, एंड देन ही स्टार्टेड लर्निंग यूडलिंग आउट ऑफ दोज. किशोर दा.
1: Refreshing Asian hits across the Leica Radio Network.

0: Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK Online and via the SBI UK branch.
1: For £1 in British sterling, you can fetch up to 127.85 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: You're listening to Bali Brahmbhat in Gold Afternoons. Gold Afternoons. Proudly sponsored by Gemin Foods. Quality, taste and tradition in every pack. Find your favorites at Asian shops near you.
1: अभी आपने जो दो गीत सुने, दो अलग अलग रूप किशोरदा के. पहला रूप था योडलिंग का और इस आवर में इट्स गोना बी राग आधारित गाने किशोरदा के. कोई बिलीव नहीं कर सकता कि ये वही सिंगर है जिसने योडलिंग किया. मेरे नाना सावन भादो जो रफ़ी साहब गाने वाले थे और फिर राजेश खन्ना जी ने रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ किशोरदा को कहिएगा वो गाए, तो आर डी बर्मन जी ने उनको गाना रिकॉर्ड करके थोड़ा सा भेज दिया और वो सीख कर आए और उन्होंने गा लिया. आज तक सुपर डुपर हिट है महबूबा की फिल्म का 1976 का. एंड देन मंजिल फिल्म का उन्होंने जो गीत गाया रिमझिम गिरे सावन, दैट इज राग किरवानी. हम गाने तो सुनते हैं लेकिन हमें मालूम नहीं होता. ऑफ कोर्स आई वुडंट एक्सपेक्ट यू, बट इट्स गुड टू नो दैट अ सिंगर हु वाज नॉन ट्रेन्ड, ए टोटली अनट्रेन्ड सिंगर हु कुड सिंग सो परफेक्टली इन दीज राग आधारित सॉन्ग्स. नेक्स्ट गाना जो होगा वो राग यमन पे, फिल्म है अनुरोध, राग यमन. उसके बाद अमर प्रेम में उन्होंने एक गीत जो गाया था कुछ तो लोग कहेंगे, दैट इज राग खमाज. वो भी मैं आपको सुनाऊंगा आज. फिल्म शर्मीली में आपने गीत सुना है खिलते हैं गुल यहां खिल के बिखर जाने को, दैट इज राग भीम पलासी. जी हाँ. और दूसरा एक किरवानी का है बेकरार दिल तू गाए जा, दूर का राही जो फिल्म थी उसमें. सुनते जाइएगा किशोर कुमार विद द टू एक्सट्रीम्स, द सेकंड एक्सट्रीम राग आधारित गाने.
3: दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय 108 बेस हॉस्पिटल उरी. स्टार्ट्स 15th ऑफ अगस्त एवरी सैटरडे एंड संडे एट 7 PM ऑन कलर्स टीवी.
4: आई होप मेरे जनेरा हम लोग वक्त पर पहुंचे.
5: लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन. राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर. ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग भी शुरू हो चुकी हैं. फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच. मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 LBS सिर्फ 13.49. सुहाना खमन ठोकला 500 ग्राम सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99. टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ 29.96. एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 9 rupees से शुरू और हर्ज़मैन बटर घी 20 kg G-Sir-10-99.
6: Falcon Cash and Carry 82A Size 10 Street West Lister LE1 2JU and 2A Rollout Cell Lister LE5 4UN. Start touring.

0: आंख बंद करके सोचो कि किस एक्ट्रेस पे ये पिक्चराइज हुआ होगा, तो यू कैन जस्ट इमेजिन नन अदर देन काजोल, काजोल विशाल देवगन, या तो काजोल मुखर्जी या सिर्फ काजोल. इमेजिन नन अदर देन काजोल, काजोल विशाल देवगन, या तो काजोल मुखर्जी या सिर्फ काजोल. यस, आज मैं कुछ छोटी सी एक कनेक्शन आपको बताता हूँ. एक बहुत ही उम्दा हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के उम्दा एक प्रोड्यूसर का हो, दैट वॉज सशाधर मुखर्जी. सशाधर मुखर्जी, ही वॉज अ फिल्म मेकर एंड ही स्टार्टेड हिज करियर विद बॉम्बे टॉकीज. 1930s में बॉम्बे टॉकीज से उन्होंने अपनी करियर शुरू की थी और फिर बाद में जुदा होकर उन्होंने फिल्मिस्तान स्टूडियो शुरू की विद द पार्टनरशिप ऑफ अशोक कुमार, ज्ञान मुखर्जी, राय बहादुर चुनीलाल. राय बहादुर चुनीलाल याद है? ही इज द फादर ऑफ म्यूजिक डायरेक्टर मदन मोहन. मदन मोहन जी के पिताजी के साथ सशाधर मुखर्जी ने फिल्मिस्तान स्टूडियो विद अशोक कुमार, ज्ञान मुखर्जी एंड मदन मोहन जी के पिताजी के साथ सशाधर ने शुरू किया. एंड देन 1950s में ही स्टार्टेड इज इंडिपेंडेंट स्टूडियो कॉल्ड फिल्मालया. जैसे कि ये फिल्में आपने देखी, दिल दे के देखो, लव इन शिमला, एक मुसाफिर एक हसीना, लीडर, ये सब फिल्में इन्होंने बनाई थी. तो इन्होंने अपने बेटे को लॉन्च किया था. बेटा कौन? जॉय मुखर्जी ऑफ कोर्स. एंड छह बच्चे थे, उसमें से तीन बेटे जॉय मुखर्जी, देव मुखर्जी एंड शोमू मुखर्जी. शोमू मुखर्जी आल्सो प्रोड्यूस एंड डायरेक्टेड फिल्म्स. अभी शोमू मुखर्जी पे आ गए. शोमू मुखर्जी ने शादी की थी तनुजा से और शोमू मुखर्जी और तनुजा की बेटी ऑफ कोर्स काजोल. एंड काजोल इज 52 इयर्स यंग टुडे. 5th ऑफ अगस्त 1974 में जन्मी हुई. 7 फिल्म फेयर अवार्ड्स, जी हाँ, इन्होंने मैच किया ऑफ कोर्स नूतन जी के साथ, क्योंकि तनुजा सिस्टर ऑफ नूतन, सो समर्थ फैमिली और मुखर्जी फैमिली का मिलाप था वो. एंड समर्थ फैमिली में हाईएस्ट अवार्ड्स थे नूतन जी के और उसको मैच कर दिया काजोल ने. 7 फिल्म फेयर अवार्ड्स. 2011 में पद्मश्री अवार्ड मिला इनको. शी डिड अ डेब्यू इन 1992. तो आई विश आई कुड हैव प्लेड ऑल हर सॉन्ग्स दिस आवर, बट देन वी आर ओनली अलाउड वन सॉन्ग ऑफ 1990s, जो मैंने आवारा भवरे आपको सुनाया. बेखुदी फिल्म थी 1992 की. उम्र थी 18 साल की जब वो अभी भी स्कूल में थी. इन्होंने शादी कर ली अजय देवगन के साथ 1999 में. एंड दे गॉट टू वंडरफुल चिल्ड्रन. अब देखा जाए तो बाजीगर फिल्म ये दिल लगी, फिर दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, DDLJ 1995 की फिल्म, कुछ कुछ होता है 98 में. शी एक्टेड द रोल ऑफ अ किलर, यस अ साइकोपैथ किलर इन द फिल्म गुप्त 1997 में. एंड एवेंजर इन दुश्मन फिल्म 1998 की. फिर कभी खुशी कभी गम K3G, दैट इज 2001 की फिल्म. फिर मेरी फेवरेट फना, दैट वॉज 2006 की फिल्म. दिलवाले विद शाहरुख खान 2015 की, अनदर ब्यूटिफुल म्यूजिकल फिल्म. उसके बाद तो 2024 तक काफ़ी फिल्में वगैरह. एंड शी इज़ वेरी कंप्यूटर सेवी एंड शी प्रिपेयर द वेबसाइट ऑफ अजय देवगन फिल्म. जब 1999 में एक प्रोडक्शन हाउस खोला अजय देवगन ने, तब इन्होंने पूरी वेबसाइट तैयार की. Now it's been renamed as Devgan Entertainment and Software Limited. So we are wishing none other than Kajol. Yes, Kajol. Happy 52nd birthday.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK Online and via the SBI UK branch.
0: For £1 in British sterling, you can get 127.85 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI YONO mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favourite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Leica Radio.
2: Gold Afternoons with Bali Brambert. Proudly sponsored by Gemin Foods, the authentic taste of India, bringing authentic flavors to your table every day. Find Gemin at Asian stores near you.
3: This part of the show is brought to you by 108 Base Hospital Uri. Starts 15th of August every Saturday and Sunday at 7 PM on Colors TV.
4: I hope Major Naina, hum log waqt par pahunche.
5: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक है? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है £39,500, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स।
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
7: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 02039633 5757. Greens by Danube. Prime location,
6: high appreciation
7: in Dubai.
8: Lester Miller is back
9: and the stage is about to explode. Confirmed artist
8: Shin DCS. Expect classic vibes, live energy and a proper celebration at the Abbey Park.
9: Hosted by the team of Leica Radio Network. Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester.
8: An event by 101 Circle in association with Leicester City Council.
9: Arts Council England.

को इस जगह। अभी नेक्स्ट गाना जो है दैट इज द फर्स्ट सॉन्ग ऑफ किशोर कुमार जिसमें उन्होंने योडलिंग किया था 1950, दैट इज द फिल्म मुकद्दर। सुनिएगा।

हाय दुनिया बड़ी बेकदर सह न सके मगर नजरों से मिले नजर दिल से मिले दिल दिल से मिले दिल हाय।

दुनिया बड़ी बेकदर, सह न सकी ये मगर, नजरों से मिले नजर, दिल से मिले दिल, दिल से मिले दिल, हे आदमी।

0: घूम रहा मेरा सर, अच्छा होकर जाऊं मर।
1: पलट तेरा ध्यान किधर, आया तेरा लकी नंबर। हे दुनिया ने की अब कदर, दौलत जो है मेरे दर, मिलके बसाएंगे घर, मिल गई मंजिल।
2: And now it's Sandy Shah next on Drive Time. Yeah, hello, do some Daniyaras while I go home. And on Laika Radio Midlands, it's gonna be Raj Patan. And Saath Nibhaiyega Aap Sandy Shah Ka.

0: छम छम छम छम छम छम। और आज तो भाई जिस तरह नेटवर्क ने, ट्यूब्स ने, गाड़ी ने, रास्ते ने मुझे छम छम करते नचाया हुआ है। I'm hearing all your pain on the WhatsApp numbers. I'm speaking to friends, I'm speaking to colleagues, and everybody's saying the roads have made them dance today. So whether you were driving or you were on public transport, today was not the day, ladies and gents. We've all gone through it together, and we're all going to party like it's 1999 through the music and wind down, relax for the evening ahead. I promise you that.
1: Energize your evenings with the Radio Wally roller coaster.
2: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक हैं? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है £39,500, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें Capita Health Assessment Jobs.
3: Lester Miller is back.
4: And the stage is about to explode. Confirmed artist.
3: Roach Killer. Get ready for big tunes, big vibes and a massive live performance.
4: Hosted by the team of Lyco Radio Network. Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester.
3: An event by 101 Circle in association with Leicester City Council.
4: Arts Council England.
5: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
6: Start.

0: थोड़ी बदमाश थोड़ी नादान सारी मुझ पे लागू है. डू यू अग्री? डॉक्टर राजदीप, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव गोइंग आउट टू यू. देहरादून में बैठ के आप हमें सुन रहे हो, आपको कैसा लग रहा है?
1: इट्स टाइम फॉर एवरीवन्स फेवरेट राइड, द रेडियो वाली रोलर कोस्टर.

0: Track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: This part of the show is brought to you by 108 Base Hospital Uri. Starts 15th of August every Saturday and Sunday at 7 PM on Colors TV.
2: I hope me janena hum log waqt par pahunche.
3: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए. दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
4: विजिट mantrahalidays.co.uk और कॉल 02037736333 नाउ. एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज. व्हाट्स योर ट्रैवल Mantra.
5: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
6: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
7: Mango season has arrived. You're also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
6: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.

0: Breaker Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester, and the Midlands with the UK's biggest Asian hits. This part of the show is brought to you by 108 Base Hospital Uri. Starts 15th of August every Saturday and Sunday at 7 PM on Colours TV.
1: I hope Major Naina, we'll reach the wait time.
2: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक है? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं, जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है £39,500, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स।
3: Weddings, celebrations, corporate events. At Rugasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020 8839 0880 and visit Rugasan.com to begin your journey. Rugasan, locate, design, manage, cater.
4: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
5: For travel at all protected.
6: Dreaming of Europe? Explore Paris, Switzerland, Holland, Italy and more with Mantra Holidays. Our tours offer authentic Indian food, experienced tour managers and Schengen visa assistance for a hassle-free journey where we take care of everything. Visit mantraholidays.co.uk or call 020-3773-633 now. That's 020-3773-633. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
7: ये है लाइका गोल्ड

किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: साउथहॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान। देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथहॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथहॉल ट्रेवल ऑन 0208574 8410। दैट्स 8574 8410।
1: साउथहॉल ट्रेवल, ऑटो प्रोटेक्टेड।
2: Location, location, location.
3: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
2: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas.
3: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas, Greens, start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 02032 3963 5757। Greens by Danio, prime location,
2: high appreciation
3: in Dubai।
4: अपने business को UK के largest Asian commercial radio network पर advertise करने के लिए call करें। Like our radio sales on 0116 471 0697 या email करें sales@leicamedia.co.uk।
5: The sounds of love across the Midlands. The love sound. This is Leica Radio.